फिरवे मी हूँ एवरिंग अलुन दिरुवा नुफनुवा ने कमं ही कुरुए खलेग फानु विदाल वाश एहन नकुन नूने तिमं खलेग फानु के वेरी रसकलांगे गंदे वा विदाल वमे हम कशवरुं तियबै मी हूँ अलुन दिरुवा फनुवा हुटे देंग हम कशवरुं तियबै मी हूँ कुरी अमल तो के खबर तियबै मी हूँ नंग अंगवा हुटे आदि एकांत की अल्लाह दादी फसे हैं कम के।

0: Mamma.
1: Apple abla.
0: Nora ekuri. Mamma batta nakam.
1: Apple abla. Muli atuga kulennu. Ehi madura jela. Dihing as badda lafi mamma hedun hadive danenu.
0: Nora benu me. Baddala.
1: Kine baddala ni. Atuga hus kulennu tiyoti. Mi budin mamma hedun hadivane. ತನಕ ದಾಮಿಗೆ ನಿಮಿದಾನೆ
2: ಹುವೇನ ಅಂಗ್ ಆರು ಫಹುಂತಿ ಐ ಎಕುಜ್ಜಯಂ ಅಲತ್ತಿ ಫೆರುನಿ ಭೀನ್ ಹದಾಕನು ಆನೇನು
1: ಕುಮಾರ್ ಮಗುಮತಿ ಮಮ್ಮೆ ಆದಿ ಮಾವೆಗೆನ್ ಮಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕುರಿ ಮಮಿಗೆ ಅಮ್ಮಿ ಐ ಮಿ ಎಹೆನ್ ಕಮ ಕೋಯ ದತ್ತುರೆ ನೂನೆ ಏಕಮಕು ನೂರ ಮಮ್ಮ ಉಫಾವೆ ಜೇದಾರ್ ಫುಲ್ ಫೆನುನೀಮಾ ಮಾಡಲ್ ಲೋಪಿಂಗೆ ಹಮ್ಮ ಹೀವನಿ ಮಮ್ಮ ಕುಡೇ
0: ನೂರ ಬತ್ತ ಮಮ್ಮಯ್ಯ
1: ವರ ಬತ್ತರು ನೂರ ಮಮ್ಮ ವರ ಅವ ದಾಂಜೆ ಹೇವಂಗೆ ಮೇದು ಮಿ ವದೇಲಿ ಹಮೇ ಕಡೆ ಮಾಮಿಯ ದಿಮಾಯಿ ಮೇ ದೆನ್ ದಾನಿ
0: ನೂರ ಬನು ಮೇದೆ ಓಕೆ ತ
1: ಕಿಹಿನೆ
0: ಮಮ್ಮ ಗೆರಂ ಅಡಿ ನೋವಾ ಗೊತಶಿ Taka, taka mono ba umete. Hendo magate nulan.
2: Huwena. Tikudja gitu ko tihawara nung jasta. Ene indizar kurata ang aharo ecce. Timma hoge tuttu kudje gotu ka wakibagin diye gota.
1: Eh, maa gila magute nete. Mamma dani inge nora? Eh, mamma hedum kula unguli dani hime ma dure jheda inge. Dani ye mamma.
0: Ale nunte mamma.
2: Nora, Delflu, ad bapa kariya.
0: Mama kiri begitu ya. Eh apa kiri? Nora baru kena wah kita kembali.
2: Tiada kiri baru kita kujj. Nora road enge. Mian mama ya inu. Eh memandang adi anak kemar membalas ni do.
0: Bapa.
2: Mama mau faham je.
0: Mama, Nora. Mama Nora gag badalane kama papa Nora mama dekhe bara hobe Nora dekhe mama hobe Nora
2: adu
0: mama de nana do papa nana ta mama kone
2: Nora dekhe
0: kyu dekhe
2: அம்மா அது அண்ணா
0: கியூட்டி அது வர பேவரேஜ் ஸ்டக்கம் பேனுமே
2: திஹுரியா சஸ் திக்கே திச்சி பல மாமாஸ் அண்ணானே பப்பேஷா ஃபரிதத்தே வஸ்தேச்சி தக்கல்வ மப்பங்கஸ் பல ஆயிவே
0: பப்பா பப்பா கேஹே தும் கவஸ் நூராது கவரி கூலா ஹே கிச்சி
2: உங்களுடன் தீதர் ஃப்ளா தி தர் ஃப்ளோக லோபிய கூலா ती कुलता कुं बप्पा के दुःख हटिए नुआन फरीदत्ता मिहितुं दो साफ कुल्ला ने ऐ नुनस कुल्ला ने ती आर्म के दिरियोलम बस रीचन नुआने नु दो ती बप्पा के मुनि दिरियोलों रीत को देख कुलता बप्पा दुआ कुस दरिफुले कन्वे कन्वे देना दुआ कुस